0: go blind. Hello?
1: Hello? कोई है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा. कोई है?
0: कभी खुद आई ना देखे तो चेहरे में दिखे कोई. मेरी तस्वीर बनती हो तो नक्शे में दिखे कोई. ये उजियारे में हो तो ठीक, लेकिन क्या हो तब जब हो घना अंधेर कमरा और

0: बता दो बस
1: चाहे किसी ना किसी पे है किसी ने है जाना दिमाग सारी राहें खुली है निगाहों से किसी पे निशाना
2: कोई है हेलो प्लीज हेल्प हेल्प मी प्लीज हेलो
3: FM.